பரிசோக கார்வா வித் ஆர்ஜே அதனான் ஆன் எம்ஜிஎம் 90.8 எஃப்எம். एक लड़का था, हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचता, लेकिन शुरुआत करने से अक्सर कतराता था, डरता था। उसे लगता था मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। एक दिन वो अपने पापा के साथ सड़क पर जा रहा था, उसने देखा एक आदमी भारी पत्थर तोड़ रहा था। वो आदमी लगातार हथौड़ा मार रहा, एक बार, दो बार, दस बार, पचास बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। लड़के ने सोचा इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने एक और वार किया और पत्थर टूट गया। लड़का हैरान हुआ, उस आदमी ने कहा पत्थर मेरी आखिरी वार से नहीं टूटा, वो उन सारे वारों से कमजोर हो चुका था जो मैंने उससे पहले किए थे। बस यही तो जिंदगी है, कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन सच ये है कि हर कोशिश हमें अंदर से मजबूत बना रही होती है। तो अगर आज कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, हो सकता है तुम्हारा पत्थर बस एक बार दूर हो। इसलिए रुकना मत, एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बस एक कोशिश आगे होती है, समझे। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल,
1: ऑल इज वेल।
0: यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। तो मैम के साथ हम वर्क कल्चर और स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर भी कॉमन हो गया है, क्या इससे स्ट्रेस कम हुआ है या बढ़ गया है?
2: देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो है वो हम बोल सकते हैं इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, है ना। तो इसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है। कंपनी डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको ये वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कल्चर हम कैसे सीप इन कर सकते हैं और उसे कंपनी को और एम्प्लॉय को कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो दिस वुड बी डिपेंडिंग ऑन द यू नो कंपनी टू कंपनी कि उनका वर्क कल्चर कैसे है। अब जैसे सैटरडेज को वर्क फ्रॉम होम हो सकता है और संडे को छुट्टी हो सकती है, तो वो कंपनीज जो सैटरडे संडे ऑफ नहीं दे सकते, दे कैन कंसिडर कि सैटरडेज को एम्प्लॉयज कैन वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, पर ये ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी हो सकता है अगर हमने इसे ठीक से मैनेज नहीं किया तो। तो अगर हम ठीक से मैनेज अगर कर सकते हैं देन एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर श्योर, बट वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कल्चर इज अ ब्लेसिंग इटसेल्फ।
0: तो वर्क फ्रॉम होम से हाइब्रिड वर्क कल्चर से स्ट्रेस कम हो गया या बढ़ गया, इसके बारे में अभी हमने मैम से जाना। तो भाई लोग, आपकी भी और बहन लोग, आपके भी दिमाग में कुछ सवाल आते होंगे तो आप हम तक पहुँचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश है सराखों पर। यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम, आरजे अदनान आपके साथ है और इस वक्त हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो आज की फरमाइश आई है प्रेम देशमुख की तरफ से। इस

क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। किशोर कुमार जी की आवाज में गाना है प्रेम पुजारी फिल्म से, जो कि 1970 में आई थी, 1970 की ये फिल्म है। और तब से लेकर आज तक यार किशोर दा के गाने ना पुराने महसूस होते ही नहीं है, जब भी सुनो ना तब फ्रेशनेस और वो एक अपनापन फील होता है। तो यही जादुई आवाज थी किशोर दा की। तो चलिए फिर फरमाइश पर उन्हीं का गाना एंजॉय करते हैं। और हाँ, अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचाओगे, नंबर नोट डाउन कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर फिर से दोहराता हूँ 9359320080। फरमाइश बताइए, मूड फ्रेश कीजिए और ये गाना एंजॉय कीजिए। कुछ ही देर में लौट कर आऊंगा, तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: வெல்கம் பேக் ஆன் MGM 90.8 FM. So, MGM में फिलहाल क्या शुरू है जानते हो? महात्मा गांधी मिशन एंड महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि इन कोलैबोरेशन विद नेशनल गांधी म्यूजियम एंड गांधी रिसर्च फाउंडेशन ऑर्गेनाइज सेकंड ऑल इंडिया महात्मा गांधी साहित्य सम्मेलन 2026 जो कि होने जा रहा है 8th एंड 9th अक्टूबर को, यानी कि आज और कल. और यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, गांधी फॉर चेंजिंग वर्ल्ड पैथवे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स ग्लोबल पीस जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी. और इस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट रहने वाले हैं श्री विवेक सावंत, चीफ मेंटर MKCL MS एंड डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑथर फॉर्मर मेंबर UPSC इंडिया. सो इसी के साथ ये कॉन्फ्रेंस ना तो दो दिन रहेगी, तो दो दिन में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होंगे, जैसे कि कॉन्फ्रेंस इन मराठी, हिंदी एंड उर्दू, एंड एग्जीबिशन गांधी फिलैटेली, गांधी एज अ जर्नलिस्ट, गांधी फुटप्रिंट एंड दांडी मार्च, एंड खादी एक्सपो भी होगा, और चार कॉम्पिटिशन भी रहेगी, इससे ड्रॉइंग, ड्रामा एंड स्क्रिप्ट राइटिंग. तो आज के वक्त पे महात्मा गांधी जी के विचार कितने जरूरी है और उन विचारों पर चलना कितना इम्पोर्टेंट है, और इस दुनिया को चेंज करना है तो गांधी फॉर चेंजिंग वर्ल्ड ये भी बहुत जरूरी चीज है. तो इसी पर एक कॉन्फ्रेंस है एंड बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, स्टॉल्स रहेंगे, तो आइएगा जरूर 8 एंड 9 अक्टूबर. सो रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है MGMSIndia.net/registration. एड्रेस तो आप सभी को पता ही होगा, MGM यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर. सो डू कम एंड स्टे ट्यून्ड.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: कभी कभी किसी दिन की शुरुआत बहुत ही मायूसी से होती है और ऐसे खबर से होती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन होता है। हेलो आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम और एक ऐसी आवाज थी अपने फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर जी की। आज जब ये कहना पड़ रहा है कि नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा एक्टर जिसे देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उनकी आवाज सुन लो और कैरेक्टर आंखों के सामने खड़ा हो ही जाता था। क्रांतिवीर में उन्होंने कहा था,
1: ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए कीड़े।
0: और फिर वही नाना जब इंसानियत की बात करते हुए पूछते हैं,
1: ये ले ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा।
0: ये सिर्फ डायलॉग नहीं थे, ये नाना की एक्टिंग के पीछे छुपी हुई इंसानियत की आवाज थी। और वेलकम है जब नाना पाटेकर जी हंसाते हुए कहते हैं,
2: आलू ले लो,
3: सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है आधा कांदा।
0: एक ही इंसान कभी गुस्सा बनकर सामने आया, कभी दर्द बनकर, कभी कॉमेडी बनकर और कभी सोसाइटी को आईना दिखाने वाला बन गया। नाना की खासियत ये नहीं थी कि वो डायलॉग बोलते थे, खासियत ये थी कि डायलॉग उनकी आवाज में जिंदा हो जाता था। आज एक कलाकार चला गया है लेकिन उसके कैरेक्टर नहीं जाएंगे, उनकी फिल्में चलेगी, उनके डायलॉग दोबारा सुनाई देंगे लेकिन बड़े पर्दे पर वो अब हमें नजर नहीं आएंगे। नाना साहब अभी तो सीन बाकी था लेकिन शायद जिंदगी का डायरेक्टर कुछ और ही डिसाइड कर चुका था। आज सुबह जब ये खबर मिली कि नाना पाटेकर जी की डेथ हो गई है, सच में पहले तो इस खबर पर यकीन करना ही मुश्किल था, पर क्या करे, नियति का खेल जो होता है। नाना पाटेकर साहब को एमजीएम 90.8 एफएम की तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। आप चले गए लेकिन आपकी आवाज, आपके किरदार और आपकी एक्टिंग हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8।

0: कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, फिल्म करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी एक अलग झलक छोड़ जाते हैं। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम और नाना पाटेकर। सिर्फ एक एक्टर नहीं थे यार, ये कहना कितना मुश्किल है ना कि थे। कल तक जो हम कहते थे कि नाना पाटेकर है, और आज हमें कहना पड़ रहा है कि नाना पाटेकर थे। जब आज मॉर्निंग में खबर सुनी कि नाना पाटेकर नहीं रहे, सच में यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो एक इमोशन थे, एक इंटेंसिटी थी, और सबसे बढ़कर एक आवाज थे। उनकी आंखों में गुस्सा होता था, आवाज में दर्द होता था, और डायलॉग में सच्चाई होती थी। चाहे क्रांतिवीर हो, यशवंत हो, अब तक छप्पन हो, या फिर वेलकम, जहां उन्होंने अपनी कॉमेडी से हमें हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। इन सारे फिल्मों में अपने एक्टिंग से कभी उन्होंने हंसाया, कभी रुलाया, तो कभी हमें समाज का आईना दिखाया। नाना हर कैरेक्टर में इतने असली लगते थे कि कुछ देर के लिए हम एक्टर को भूल जाते थे, सिर्फ कैरेक्टर याद रखते थे। उनका एक डायलॉग था, वो एक मच्छर वाला, आपको तो याद होगा। और दूसरी तरफ वही आर्टिस्ट था जो स्क्रीन पर खड़ा होकर सिस्टम से सवाल करता था। यही तो नाना पाटेकर थे। आज उनके जाने की खबर के साथ सिर्फ एक एक्टर नहीं चला गया, सिनेमा का एक ऐसा चैप्टर खत्म हुआ जिसे रिप्लेस करना शायद ही मुमकिन हो पाएगा। नाना, आपकी फिल्में दोबारा चलेगी, आपके डायलॉग दोबारा सुनाई देंगे, लोग आपकी मिमिक्री करेंगे, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि कुछ कलाकार स्क्रीन पर नहीं रहते, वो लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। एमजीएम 90.8 एफएम की तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। सिर्फ पर्दा गिर गया है, लेकिन आपका सीन अभी खत्म नहीं हुआ। स्टे ट्यून ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: दोस्तों, जब भी हम ऊपर नीला आसमान देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में गर्व का एहसास उठता है, क्योंकि उसी आसमान में उड़ते हैं हमारे देश के रखवाले इंडियन एयरफोर्स। आज जानते कुछ दिलचस्प बातें इस शौर्य और हिम्मत से भरी ताकत के बारे में, क्योंकि आज है एयरफोर्स डे। आरजे अदनान आपके साथ है और आप सुन रहे हो इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1925 को। इस वक्त सिर्फ 6 ऑफिसर और 19 एयरमैन थे और आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स हमारी इंडियन एयरफोर्स है। इनका मोटो है नभास परशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये लाइन ली गई है गीता से, जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि आत्मबल और सम्मान की भी पहचान है। और सुनिए मजेदार बात की, आज हमारी एयरफोर्स के पास राफेल और सुखोई SU-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स है, जो कुछ सेकंड में ही 2000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पकड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आसमान में कोई विमान उड़ता दिखे तो सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि वो सिर्फ हवा नहीं चीर रहा है, वो हमारे देश की हिम्मत बढ़ा रहा है। और भी इस बारे में जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इन द शो ऑल इज वेल विद आरजे अदनान।
1: Only on MGM 90.8 FM.

दोस्तों एक बार सोचिए, 15,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में टेम्परेचर और सामने दुश्मन के फाइटर जेट। ऐसे में जो मुस्कुराते हुए कॉकपिट में बैठता है वो है हमारा एयर वॉरियर आरजी अदनान, आपके साथ इन द शो। और आज है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ ताकत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी प्लस करेज का सबसे जबरदस्त मेला है। क्या आप जानते हैं हमारे पास गरुड़ कमांडो फोर्स भी है। ये वो स्पेशल यूनिट है जो एयरबेस की सुरक्षा से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक पूरा संभालती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, IAF के पास अपने खुद के सैटेलाइट भी है जिसमें वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते है। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि एक पायलट बनने में लगभग 3 साल का वक्त लगता है। और सुनिए, बस जेंट्स नहीं लेडीज भी है जो कि फाइटर पायलट से। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत और मोहना सिंह, ये तीनों वो नाम है जिन्होंने आसमान में भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों जब भी हवा में की आवाज आए समझ लीजिएगा कि भारत की ताकत उड़ान भर रही है। ये है अपनी इंडियन एयरफोर्स जहां जज्बात भी उड़ते हैं और जुनून भी उड़ता है। एक ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है अपने इंडियन एयरफोर्स के नाम। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो। Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, हम

0: कभी कभी किसी दिन की शुरुआत बहुत ही मायूसी से होती है और ऐसे खबर से होती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन होता है। हेलो आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम और एक ऐसी आवाज थी अपने फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर जी की। आज जब ये कहना पड़ रहा है कि नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा एक्टर जिसे देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उनकी आवाज सुन लो और कैरेक्टर आंखों के सामने खड़ा हो ही जाता था। क्रांतिवीर में उन्होंने कहा था,
1: ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए कीड़े।
0: और फिर वही नाना जब इंसानियत की बात करते हुए पूछते हैं,
1: ये ले ये मुसलमान का खून ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा।
0: ये सिर्फ डायलॉग नहीं थे, ये नाना की एक्टिंग के पीछे छुपी हुई इंसानियत की आवाज थी। और वेलकम में जब नाना पाटेकर जी हंसाते हुए कहते हैं,
2: आलो ले लो,
3: सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है आधा कांदा।
0: एक ही इंसान कभी गुस्सा बनकर सामने आया, कभी दर्द बनकर, कभी कॉमेडी बनकर और कभी सोसाइटी को आईना दिखाने वाला बन गया। नाना की खासियत ये नहीं थी कि वो डायलॉग बोलते थे, खासियत ये थी कि डायलॉग उनकी आवाज में जिंदा हो जाता था। आज एक कलाकार चला गया है लेकिन उसके कैरेक्टर नहीं जाएंगे, उनकी फिल्में चलेगी, उनके डायलॉग दोबारा सुनाई देंगे लेकिन बड़े पर्दे पर वो अब हमें नजर नहीं आएंगे। नाना साहब अभी तो सीन बाकी था लेकिन शायद जिंदगी का डायरेक्टर कुछ और ही डिसाइड कर चुका था। आज सुबह जब ये खबर मिली कि नाना पाटेकर जी की डेथ हो गई है, सच में पहले तो इस खबर पर यकीन करना ही मुश्किल था, पर क्या करे, नियति का खेल जो होता है। नाना पाटेकर साहब को एमजीएम 90.8 एफएम की तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। आप चले गए लेकिन आपकी आवाज, आपके किरदार और आपकी एक्टिंग हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एक इमोशन थे, एक इंटेंसिटी थी और सबसे बढ़कर एक आवाज थे। उनकी आंखों में गुस्सा होता था, आवाज में दर्द होता था और डायलॉग में सच्चाई होती थी। चाहे क्रांतिवीर हो, यशवंत हो, अब तक छप्पन हो या फिर वेलकम, जहां उन्होंने अपनी कॉमेडी से हमें हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। इन सारे फिल्मों में अपने एक्टिंग से कभी उन्होंने हंसाया, कभी रुलाया तो कभी हमें समाज का आईना दिखाया। नाना हर कैरेक्टर में इतने असली लगते थे कि कुछ देर के लिए हम एक्टर को भूल जाते थे, सिर्फ कैरेक्टर याद रखते थे। उनका एक डायलॉग था वो एक मच्छर वाला, आपको तो याद होगा। और दूसरी तरफ वही आर्टिस्ट था जो स्क्रीन पर खड़ा होकर सिस्टम से सवाल करता था, यही तो नाना पाटेकर थे। आज उनके जाने की खबर के साथ सिर्फ एक एक्टर नहीं चला गया, सिनेमा का एक ऐसा चैप्टर खत्म हुआ जिसे रिप्लेस करना शायद ही मुमकिन हो पाएगा। नाना, आपकी फिल्में दोबारा चलेगी, आपके डायलॉग दोबारा सुनाई देंगे, लोग आपकी मिमिक्री करेंगे, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि कुछ कलाकार स्क्रीन पर नहीं रहते, वो लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। MGM 90.8 FM की तरफ से दिल से श्रद्धांजलि। सिर्फ पर्दा गिर गया है, लेकिन आपका सीन अभी खत्म नहीं हुआ। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।
1: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: வெல்கம் பேக் ஆன் MGM 90.8 FM. So, MGM में फिलहाल क्या शुरू है जानते हो, महात्मा गांधी मिशन एंड महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि इन कोलैबोरेशन विद नेशनल गांधी म्यूजियम एंड गांधी रिसर्च फाउंडेशन ऑर्गेनाइज सेकंड ऑल इंडिया महात्मा गांधी साहित्य सम्मेलन 2026 जो कि होने जा रहा है 8th एंड 9th अक्टूबर को, यानी कि आज और कल. और यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, गांधी फॉर चेंजिंग वर्ल्ड पैथवे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स ग्लोबल पीस जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी. और इस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट रहने वाले हैं श्री विवेक सावंत, चीफ मेंटर MKCLMS एंड डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑथर फॉर्मर मेंबर UPSC इंडिया. सो इसी के साथ ये कॉन्फ्रेंस ना तो दो दिन रहेगी, तो दो दिन में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हो गए, जैसे कि कॉन्फ्रेंस इन मराठी, हिंदी एंड उर्दू, एंड एग्जीबिशन गांधी फिलैटेली, गांधी एज अ जर्नलिस्ट, गांधी फुटप्रिंट एंड दांडी मार्च, एंड खादी एक्सपो भी होगा, और चार कॉम्पिटिशन भी रहेगी, इससे ड्रॉइंग, ड्रामा एंड स्क्रिप्ट राइटिंग. तो आज के वक्त पे महात्मा गांधी जी के विचार कितने जरूरी है और उन विचारों पर चलना कितना इम्पोर्टेंट है, और इस दुनिया को चेंज करना है तो गांधी फॉर चेंजिंग वर्ल्ड ये भी बहुत जरूरी चीज है. तो इसी पर एक कॉन्फ्रेंस है एंड बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, स्टॉल्स रहेंगे. तो आइएगा जरूर 8 एंड 9 अक्टूबर. सो रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है MGMSIndia.net/registration. एड्रेस तो आप सभी को पता ही होगा, MGM यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर. सो डू कम एंड स्टे ट्यून्ड.
1: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हॅलो हाय नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8.